0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা,
1: 107 FM রেইনবোতে নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बजकर 3 मिनट स्टूडियो के घड़ी में वक्त कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में सुचिश्मिता आप सबके साथ और बातें होंगी ढेर सारे विषयों पर, लेकिन सबसे पहले ये गीत।

1942 लव स्टोरी से सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने इस प्यारे से गीत को कुछ ना कहो। अब कैसे कुछ ना कहें, नॉनस्टॉप गपशप की बातें हैं तो कुछ तो कहना ज़रूरी है। वैसे आज सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, खामोश। जी हाँ, आज बात तो होगी लेकिन उनकी, जिन्होंने इस वर्ड को, इस शब्द को डायलॉग बना दिया, शत्रुघ्न सिन्हा की। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ 107.8 FM रेनबो दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। और नॉनस्टॉप गपशप में आज बातें होंगी शत्रुघ्न सिन्हा की, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल की, यादों की, मुस्कुराहटों की। आज वहीं याद करेंगे हम शत्रुघ्न सिन्हा को। आज की महफिल सजी है उस अभिनेता के नाम जिसके एक संवाद ने उन्हें अमर कर दिया, खामोश। जी हाँ, बातें हो रही हैं शत्रुघ्न सिन्हा की, लेकिन सिर्फ फिल्मों की बातें नहीं होंगी। बात फिल्मों के साथ साथ, इनके साथ साथ हम आप तक पहुंचाएंगे एक चुटकी नुस्खे, और ये भी बताऊंगी कि क्यों है आज का दिन खास।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

1946 15 जुलाई यानी आज ही के दिन बिहार के पटना में शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म हुआ। दोस्तों बिहार के पटना से निकले हुए इस नौजवान ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बॉलीवुड में उन्हें शॉटगन के नाम से जाना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की शुरुआत उन्होंने खलनायक के रूप में की थी, लेकिन उनकी दमदार आवाज और स्टाइल और आत्मविश्वास ने उन्हें एक नायक से भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। कहते हैं कि शूटिंग सेट पर भी वो माहौल को हमेशा हंसी मजाक कर रखते थे और यही कारण है कि साथी कलाकार उनके साथ काम करना पसंद करते थे। बातें हो रही हैं शत्रुघ्न सिन्हा की।

तब आपको बताऊं ये खामोश वाला किस्सा कैसे आया। आपको पता है ये खामोश संवाद जो है पहले लिखा ही नहीं गया था फिल्म में। शत्रुघ्न सिन्हा ने जो है इसे अपने अंदाज में कुछ यूं कहा कि फिर यही उनकी पहचान बन गई। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा असर था कि इस शब्द ने तालियां बटोर ली।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। एक चुटकी नुस्खे।
1: शब गप शप में अब वक्त है कि हम बात करें एक चुटकी नुस्खे की। तो अगर नुस्खों की बात करें तो कई तरह के नुस्खे होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को, दिमाग को, मानसिकता को, शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, अच्छा बनाए रखते हैं। तो उनमें से एक नुस्खा मैं आपको अगर अभी दूं वो ये कि अगर आप सुबह उठते साथ सबसे पहले अपने मोबाइल को देखने के आदि हैं, आदत रखते हैं, तो कल से एक छोटा सा चेंज कीजिए। पहले उठिए और अपने खिड़की के पास जाइए, नींद से उठते साथ अपनी खिड़की खोलिए, उसके पास जाइए, ताज़ी हवा लीजिए और मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए मूड जो है खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और पूरे दिन आप खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। आज के दिन
1: दस बज के 45 मिनट स्टूडियो के घड़ी में वक्त है और आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप से विनिंग आई एफ एम ट्रेन बो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। और आज के दिन में अब मैं आपको बताती हूँ कि 15 जुलाई को जो है क्या है। आज विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। हमें याद दिलाता है आज का दिन कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई भाषा, नया हुनर, नई तकनीक या फिर कोई नया नई कला, हर दिन कुछ नया सीखा जा सकता है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली गीत की ओर।

10:51 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप गपशप। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बात की हमने एक चुटकी नुस्खे में आपको नुस्खा भी बताया और साथ में बताया कि क्यों है आज का दिन खास। सबके साथ अब स्टूडियो की घड़ी कहती है कि मुझे कहना होगा आप सबको अलविदा। सुनते रहिए, साथ रहिए 107.8 FM ट्रेन बो, दिल से दिल तक। छोड़े जाऊंगी आपको बेहद खूबसूरत एक गीत के साथ, मोहम्मद अजीज कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में चालबाज फिल्म से। इस गीत के साथ सुनते रहिए, साथ रहिए, बने रहिए और खुश रहिए, आस पास सब में खुशियाँ बिखेरते रहिए। और इसी के साथ कहेगी श्रुति स्मिता टाटा एंड बाय बाय।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कालोजयी बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया छुए जाक मन, छुए जाक मन।
2: আপনি টিউন করেছেন 107 FM রেইনবো। স্টুডিওর ঘড়ি বলছে সকাল 11:25। গান্দরিয়া, বুধবারের গান্দরিয়ায় স্বপ্ন নীলাঞ্জনা চলে এসেছে গান্দরিয়া নিয়ে, এবং বুধবারের

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन।
2: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते गान दोरिया छुए जाक मन।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत और लेकर आई हूं परियोजना प्रस्तुति में आज PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर गरीब और वंचित परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है ताकि वे बिना किसी न्यूनतम राशि को के भी बैंक खाता खोल सके। योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, बातें हैं और लाभ वाली जो बातें हैं वो भी मैं आपसे बताऊंगी। जीरो बैलेंस खाता है। इस खाता में कोई न्यूनतम राशि यानी कि मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं होती है। ब्याज और जमा की बात करूं तो खाते में जमा राशि पर बैंक नियम अनुसार ब्याज देता है। और दुर्घटना बीमा, जन धन खाता धारकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा है। खाते के जो संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद आवश्यकता पड़ने पर 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट कर्ज की सुविधा उपलब्ध होती है। सरकारी योजना का लाभ अगर मैं कहूं इस योजना से संबंधित, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष लाभ DBT सब्सिडी और पेंशन का पैसा सीधे इस खाते में जमा होता है। रुपे डिबेट कार्ड, खाता धारक को रुपे डिबेट कार्ड भी दिया जाता है। खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है वो क्या चाहिए, तो आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड उपलब्ध है तो किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आधार नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक मान्य दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक प्रधानमंत्री जनधन योजना वेबसाइट देख सकते हैं। अपने नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र के माध्यम से खाता खोलने में की जो प्रक्रिया है उसे भी आप पूरी करवा सकते हैं वहां से। तो चलिए, आज पीएम धनजन योजना पर ढेर सारी बातें आपसे साझा किया परियोजना प्रस्तुति में। इसी तरह फिर किसी रोज आऊंगी और किसी और एक योजना से ढेर सारी बातें आपसे साझा करूंगी। नमस्कार।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।
1: ऐसा है दोस्तों कि तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का जो आपकी आरजी सुलक्षणा पर्वत अपने अंदाज में कहती है, यानी कि ये जो तड़केदार म्यूजिकल प्रोग्राम है ना, उसमें ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर का जो है तड़का लगाते हैं हम, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना पूरे एकदम एनर्जी से एकदम बूस्टअप हो जाए। तो म्यूजिकल बूस्टर प्रोग्राम तीन का तड़का जो है उसमें आप सभी साथियों का

सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के इस द रियल रेडियो पर। और क्यों, क्या कहते हैं, किस गाने से आगाज करूं कार्यक्रम का, शुरुआत किस गाने से करूं। चलिए आप जब तक सोचते हैं तब तक मैं शुरुआत करती हूँ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के इस गीत से।

ये जो 107 वाला रास्ता है ना, इसमें यू टर्न नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जुड़ते हैं वो दिल से जुड़ते हैं, और एक बार जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया ना, फिर काहे को वापस जाना, कैसा यू टर्न, वो तो होना ही संभव नहीं है। और जब आप जुड़ते हो ना म्यूजिकली योर्स में, और वो भी ढलती हुई दोपहर जब शाम की ओर करवट लेती है, और तब हम लेकर आते हैं 3 का तड़का हैशटैग दिल धड़का, यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम 3 का तड़का जो है, उसमें आप जो है ना, मतलब ये जो एक टाइम होता है ना, ज्यादातर लोग जो है बड़े लेजी लेजी फील

करते हैं, लगता है कि एकदम एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है, तो हम इसी समय में लेकर आते हैं ये कार्यक्रम ताकि आप फुल ऑफ एनर्जी से भर जाए। और फिलहाल आपको बता दें कि ये खूबसूरत सा गीत तेरा रास्ता छोड़ू ना आपने सुना अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मानी की आवाज में, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत का जादू जो था वो था विशालन शेखर का। और अब आपको एक बॉलीवुड वाला खबर सुना दूं, वरना आप भी कहोगे कि सुलक्षणा आई और बॉलीवुड की खबरें नहीं सुना रही है। तो चलिए बता दूं अक्षय कुमार का नया अवतार के बारे में। तो कॉमेडी फिल्मों के बाद अक्षय कुमार अब डार्क और थ्रिलर जोनर की फिल्म हैवान में नजर आने वाले हैं, जिसका टीजर आज जारी कर दिया गया है। और खबरें जानने की इच्छा हो रही है तो बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन बाय द टाइम अगला गीत सुनिए कुणाल गांजा वाले की आवाज में फिल्म मर्डर से।

सूर्य की घड़ी में समय उछला है 3:17:35 और आपको बता दो कि 3:30 से आप सुनेंगे एनसीईआरटी पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बट बाय द टाइम हम और आप सुनेंगे ढेर सारे बॉलीवुड के गाने, मस्ती भरे गाने। और क्या है कि जब नाम ही है 3 का तड़का, तो जाहिर सी बात है कि हैशटैग दिल धड़का उसके साथ तो जुड़ा ही होगा। तो गोविंदा के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वो कमबैक कर रहे हैं और एक फिल्म में वो एक्ट भी करेंगे, उसे प्रोड्यूस भी करेंगे। तो ये गोविंदा के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। बाय द टाइम आप सोचे कि वो कौन सी फिल्म होगी तो मैं बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले क्यों ना सुन लिया जाए फिल्म कृष्णा कॉटेज से श्रेया घोषाल की आवाज में वो गीत जिसके बोल है बेपनाह प्यार है आजा। और इसके पहले जो गीत आपने सुना कुणाल गाजेवाले की आवाज में फिल्म मर्डर से, गीतकार सईद कादरी और संगीत का जादू अनु मलिक का। और अब फिलहाल अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

ऐसा है ना कि ये जो मिलने जुलने वाली बात है, इसका जो क्रम है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब मिलते जुलते बात बन जाए। और वैसे बता दूं कि इस वक्त आप कार्यक्रम सुन के, मतलब कहते हैं ना कि मजे लो, एंजॉय करो, वैसे मैं बता दूं कि ये जो एंजॉयमेंट वाला वर्ड है ना, इसके भी बहुत सारे मायने हैं। कोई फिल्म देख के उसे लगता है एंजॉयमेंट हो गया, तो कोई खाना खा के, मनपसंद खाना खा के, कोई सोचता है कि चलो हम ट्रैवल करें और जगह जगह जाएं, और मतलब वो भी एक तरीके से एंजॉयमेंट का हिस्सा बनता है। लेकिन रियल एंजॉयमेंट तब है जब आप सुनते हो तीन का तड़का # दिल धड़का, वो भी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और ऐसा है दोस्तों कि अब अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह की आवाज में, और इस गीत को सुनते सुनते हम रुक करेंगे NCERT प्रोग्राम की ओर।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: सूरज कुमार ढाकसे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
2: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400

0: 700 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई, लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
1: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है।

0: पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
1: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
0: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था
1: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
0: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
1: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
0: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्रवासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
1: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
0: जी,
1: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
0: जी।
1: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
0: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
1: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
0: जी।
1: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
0: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्रवासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
1: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
0: जी।
1: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
0: जी,
1: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
0: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
0: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक,
5: रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
6: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
7: नाना जी,
6: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है।

0: आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
2: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
0: ये लो नानी जी भी आ गई।
3: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
2: अरे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
3: हाँ वो तो है।
1: नानी हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
3: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
2: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
2: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
0: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
2: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
2: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी मानसूनी पवन कैसे बनती है?
2: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
2: क्योंकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
2: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
2: देखो भाई यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
3: और बच्चों भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
2: हाँ।
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
1: ओ।
3: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
2: बिल्कुल।
3: और हाँ हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
3: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
3: हाँ।
2: बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला साहित्य त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
3: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: वही इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे

0: मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देस विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
1: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
2: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
4: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी।

0: कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, रो नहीं, मैं तुम्हें चार आने पैसे देता हूँ। ये लो चार आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
3: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
4: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय हाँ? कोई बात नहीं
4: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
3: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
5: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ एक अपराध हो गया।
5: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
5: बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
5: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ

0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
1: नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो?
2: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
1: क्या सोच रहे हो तुम?
2: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
1: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
2: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
1: नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
2: प्रणाम महात्मन।
3: जीते रहो पुत्र।
2: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
3: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे

0: तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
1: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
1: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्रों भर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद

0: का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
2: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: हम साथ साथ। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के 107 एफएम रेनबो यानी कि कोलकाता के दी रियल रेडियो पर हाजिर है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम इवनिंग छायालोक। और ऐसा है दोस्तों कि छायालोक में भी हर रोज अलग अलग सेगमेंट रहता है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए। और आज बुधवार की शाम आपके लिए है हम साथ साथ, और रहेंगे हम साथ साथ 8 बजे तक आपके साथ में रहूंगी। और ऐसा है दोस्तों कि हम साथ साथ में जानते ही हैं कि किसी ना किसी जोड़ी पर हम कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो आज जो है सिल्वर स्क्रीन के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ी है शाहरुख खान और काजल की। मतलब क्या ही बताऊं, उनकी जोड़ी जो है ना वो सिल्वर स्क्रीन पर, मतलब इतने लोग उन्हें पसंद करते हैं इस जोड़ी को कि भले वो फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं एक साथ, लेकिन उनकी सभी फिल्में जो हैं वो लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो चलिए आगाज करती हूँ, शुरुआत करती हूँ उस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म बाजीगर से। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ में इस गीत को मैं आप तक पहुँचाती हूँ।

इस खूबसूरत से गीत को कलमबद्ध किया है गौहर कानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने। और ऐसा है दोस्तों कि मतलब 34 साल के कैरियर में शाहरुख खान और काजोल ये दोनों सितारे जो हैं एक दूसरे के साथ 7 फिल्मों में काम किए, और हैरानी की बात है कि दोनों की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। दोनों दिग्गजों की साथ में की गई फिल्में जो है ना, मतलब उनकी बात और गीतों को लेकर मैं आज आई हूँ कार्यक्रम हम साथ साथ में, और आपकी आरजे दोस्त सुलक्षणा पर्वत रहेगी शाम के 8 बजे तक। और ऐसा है कि काजोल ने फिल्म बेखुदी से और शाहरुख खान ने दीवाना से डेब्यू किया था। ये दोनों ही फिल्में 1992 में रिलीज हुई थी। वहीं उन्होंने सबसे पहले स्क्रीन बाजीगर 1993 के जरिए शेयर की थी। इस पिक्चर में शिल्पा शेट्टी भी लीड रोल में, उन्हें भी देखा गया था, और इसमें शाहरुख नेगेटिव भूमिका में दिखाई दिए थे। ये फिल्म सुपर हिट थी, और मैं तो सुपर हिट नहीं कहूंगी, सुपर डुपर हिट थी। और आज भी उस फिल्म के गाने सुनना लोग बेहद पसंद करते हैं, फिल्म देखना भी पसंद करते हैं। और अगर ये जलवा नहीं होता तो शाहरुख और काजोल का ये जो मतलब हम जो एक सफल जोड़ी मानते हैं बॉलीवुड के, शायद ये भी नहीं होता। और अब आगे बढ़ते हुए आपको मैं सुनवाना चाहूंगी एक और गीत। हाँ जी, गीतों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। अगला गाना है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

0: बाजीगर के बाद शाहरुख और काजोल ने 1995 में दो फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी और उनकी दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जनवरी में उनकी फिल्म आई थी करण अर्जुन और इसके बाद अक्टूबर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी। बाजीगर के बाद शाहरुख और काजोल ने 1995 में दो फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी और उनकी दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और काजोल और शाहरुख की जोड़ी को इसके बाद दर्शकों ने 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है में देखा। फिल्म में मशहूर एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी नजर आई थी। इस तिगड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। काजोल और शाहरुख की जोड़ी को इसके बाद दर्शकों ने 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है में देखा था। फिल्म में मशहूर एक्ट्रेस जो है रानी मुखर्जी तो नजर आई ही थी और ऐसा है दोस्तों कि इस फिल्म से मैं आपको गाना सुनवाऊंगी लेकिन उससे पहले आपको सुनवाना चाहूंगी। जी हां, हर महीने के आखिरी रविवार को आपके लिए रहता है एक विशेष कार्यक्रम मन की बात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

एक बार फिर आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आप सभी का सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर स्वागत करती है। और ऐसा है दोस्तों कि आज हम बात कर रहे हैं हम साथ साथ में शाहरुख खान और काजोल की जो जोड़ी है उस पर, और शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और एफर्टलेस थी। इसमें शाहरुख का चार्म, इंटेंसिटी और काजोल की जिंदा दिली, मासूमियत और एक्सप्रेसिव आंखें मिलकर स्क्रीन पर जादू जगाती थी। दोनों का एक दूसरे पर अटूट भरोसा और रियल लाइफ की गहरी दोस्ती पर्दे पर दिखती थी। उनकी केमिस्ट्री को जो है खास बनाने वाले जो पहलू हैं, परफेक्ट बैलेंस रहता था। शाहरुख की रोमांटिक और गंभीर पर्सनैलिटी के साथ काजोल की जो मस्त मौला और सहज अदाकारी का बेहतरीन तालमेल। जी हाँ, और भी इनके केमिस्ट्री जो पर्दे पर आग लगाती थी उसके बारे में जरूर

बताऊंगी, मतलब लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते थे, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाती हूं मैं कुछ कुछ होता है से कोई मिल गया। उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित।

शाहरुख और काजोल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की एक और खास बात यह है कि दोनों अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से बिना कुछ कहे प्यार और जज्बात बयां कर देते थे। दिलों को छूने वाला आकर्षण उनकी जोड़ी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 से लेकर कुछ कुछ होता है 1998 और माय नेम इज खान 2010 तक में हमेशा एक नेचुरल और दिल को छू लेने वाला एहसास पैदा किया। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में हो चला है 7:32 और 9 सेकंड और आपने ट्यून कर रखा है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो और कार्यक्रम सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छाया लोक सेगमेंट हम साथ साथ। और अगला गाना आप सभी के लिए कभी खुशी कभी गम से अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में, गीतकार अनिल पांडे, संगीतकार हैं संदेश सांडिलियर ने।

रोशन जैसे दिग्गज सितारे भी थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर निकली और ये पिक्चर बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शाहरुख खान और काजोल ने फिल्म माय नेम इज खान में भी स्क्रीन शेयर की थी। ये पिक्चर हिट निकली 2010 की। इस पिक्चर का डायरेक्शन करण जौहर ने किया था। और चलिए फिलहाल सुनाती हूँ मैं अगला गीत आपको फिल्म माय नेम इज खान से, राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज में उस गीत को जिसे कलमबद्ध किया है निरंजन अयंगर ने और संगीतबद्ध किया है शंकर ईशान लॉय ने।

0: 25 साल पहले साल 2001 में रिलीज हुई कभी खुशी कभी गम,
1: क्या ये मेरा पहला,
0: और इन दोनों कलाकार शाहरुख और काजल साथ नजर आए थे। फिल्म का हिस्सा अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, करीना कपूर और ऋतिक

इस गीत को आपने सुना फिल्म करण अर्जुन से कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1995 और वहीं आखिरी बार इस जोड़ी शाहरुख खान और काजोल को जो है इस जोड़ी को दर्शकों ने मतलब 2015 में दिलवाले, जी हाँ दिलवाले फिल्म में देखा था और फिल्म का हिस्सा वरुण धवन और कीर्ति सेनन भी थी, लेकिन ये पिक्चर एवरेज साबित हुई थी। और फिलहाल अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म गेरुआ, फिल्म दिलवाले से ये गीत जो है अरिजीत और अंतरा मित्रा की आवाज में आप सुनेंगे। अमिताभ भट्टाचार्य और प्रीतम चक्रवर्ती जो है इसे कलमबद्ध संगीतबद्ध किए हैं और गीतकार जो है अमिताभ भट्टाचार्य। और इस गीत को सुनते सुनते आगे दीजिएगा आप अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को। जी हाँ, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी कार्यक्रम में, लेकिन चलते चलते यही कहूंगी कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और हाँ, ये भला कैसे कहना मैं भूल सकती हूँ कि सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो जो कनेक्ट करता है हार्ट टू हार्ट, इसे सुनते रहिए क्योंकि ये जो है आपके साथ रहता है 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। और फिलहाल आप सभी से यही कहूंगी कि शुभ रात्रि, लेकिन 8 बजे से आप सुनेंगे स्थानीय समाचार 2 मिनट के लिए और 8:02 से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहेंगी छाया लोक, हम साथ साथ लेकर कौन, पूनम सिंह। तो फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

सुकून की तलाश में निकले थे हम, रात की खामोशी में चांद ने अपना अक्स दिखाया। तब समझ आया कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बस चांदनी की तरह भीतर होती है। आठ बजकर 9 मिनट आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक, और फिल्म का नाम हम आपके दिल में रहते हैं। वैसे नगमा इतना खूबसूरत हो तो दिल में रहना तो बनता है, लेकिन ये जो दो गाने बैक टू बैक आपने चांद से रिलेटेड है सुन लिए, अब छुप गया बदली में जाकर, ये तो कल ही अमावस की रात थी तो चांद का छुपना तो लाजमी है। और वैसे भी आजकल बरसात की जो हालत है और आसमान का जो हालचाल है, तो उसमें अमावस की रात ना भी हो तो चांद की लुका छिपी तो लगी हुई है, ये तो मैं भी जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं। लेकिन अब चांद है तो लुका छुपी तो खेलेगा ही, लेकिन सदियों से चांद को खूबसूरती का दूसरा नाम माना जाता है। बस चांद की बात हो और खूबसूरती की बात ना हो तो बात अधूरी से लगती है ना। तो बातें होंगी, ढेर सारी होंगी, भर भर के होंगी, लेकिन उससे पहले यह खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक।

8:25 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक पूनम के संग। और आज मैं बातें कर रही हूं चंदा मामा के बारे में। जी हाँ, कोई उसे चंदा मामा बुलाता है तो कोई चांद बुलाता है, तो कोई चांद को उसकी चांदनी के नाम से जानता है। बहुत सारी बातें हैं। और चांद को तो हमेशा से ही शीतलता और शांति का प्रतीक माना गया है, और बचपन से तो हम इसे चंदा मामा बुलाकर अपने आप को ये मना ही लेते हैं कि ये हमारे एक मामा तो हैं ही। और अगर बात कवियों की हो तो कवियों ने इसकी सुंदरता की तुलना कहाँ तक पहुँचाई है। वो कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो बस उनकी जो कल्पना है और उस कल्पना तक मैं तो नहीं पहुंच सकती, आप पहुंच जाएं तो अलग बात है। तो कवियों की बात को तो मैं परे ही रखती हूं, क्योंकि उन्होंने इसकी सुंदरता की तुलना मतलब असीमित आप कह सकते हैं, कोई सीमा ही नहीं है। इतनी खूबसूरती से सुंदरता की तुलना करते ही गए। और इसकी चांदनी को तो बस पूछिए मत। प्यार की अभिव्यक्ति, दूसरी परिभाषा और जाने क्या क्या मान लिया इन्होंने। बस बात को यहीं पर एक अल्प विराम देती हूँ, क्योंकि इतनी भारी भारी बातों के बाद एक हल्का फुल्का और खूबसूरत सा नगमा तो बनता है ना, तो फटाफट आप सब तक पहुँचा देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107, दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

गीतकार हैं अनिल पांडे और संगीतकार हैं संदेश शांडिल्या। आवाजें अलका याग्निक और सोनू निगम और फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम। अब जैसे इस फिल्म का नाम है ना कभी खुशी कभी गम, ठीक वैसे ही चांद कभी हालचाल है। आप सबको लगेगा कैसे, अब वो है ना कभी अमावस की रात और कभी पूर्णिमा की रात। जी हाँ, चांद हमें कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि जीवन के रास्ते में उतार चढ़ाव तो आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जिस तरह से चांद पूर्णिमा पर पूरा होता है और फिर धीरे धीरे धीरे घटकर अमावस की ओर जाता है, यानी जीवन के चक्र को समझाता है और ये सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद फिर से पूर्णिमा का आना तय है। फिलहाल 8:43 और बातों के बाद गाना आना तय है, तो फटाफट आप सब तक वही पहुंचा देती हूँ। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ ही बने रहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

के मोहन और यशिता शर्मा के खूबसूरत आवाज में चांदनिया फ्रॉम टू स्टेट्स। चांद उन सभी लोगों के लिए एक समान है जो इसे देखते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो क्यों ना बैठे हों, उन्हें एक सा ही चांद दिखाई देता है। तो मानो या न मानो, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति हमें जोड़ती है। और चांद की चांदनी में बैठकर भला किसे सुकून नहीं मिलता है? वो सुकून के पल, वो शांति के पल जो दुनिया के किसी भी चीज में नहीं है। चांद की चमक हमें ये याद दिलाती है कि अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाया जा सकता है। फिलहाल 8:53 और वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:58 और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गाने बाजू ओन रेडियो सुनछो 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadin, Shat Shure Sharadin. Budbarer rate shuncho Blockbuster Budbar, Blockbuster Budbar, 107 FM Rainbow Day.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

आपके लिए 107 FM रेनबोते बैक टू बैक सुनबो लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार द्वैत कण्ठे आधी छवि थेके एकटी गान आर तारपर उमराओ जान थेके आशा भोसलेर कण्ठे।

अब हमें जाना कहाँ, कहीं नहीं जाना, करुण अपना म्यूजिक मस्तिर एकटाई ठिकाना 107 FM रेनबो आपके लिए थे। सुनछिलेन कविता कृष्णमूर्तिर कण्ठे खामोशी छवि थेके एई गानटी, आर एर परेर गानटी शोनाबो लता मंगेशकरेर कण्ठे मुकद्दर का सिकंदर छवि थेके।